0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1।

0: ना जाए।
1: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: एक ये नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: or email rosid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping.
4: Theriye zara. Ye commercial to sun le.
5: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
6: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
7: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
6: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
7: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
6: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
7: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
6: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज से जल्दी कम कर दे रहे सोने दे स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
7: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
6: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
7: जबरदस्त मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
6: लो जी ओ भी जुबानी याद है 01156713677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
8: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: आपको क्वालिटी वर्क बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
4: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
5: हजार 97.1 FM।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती।

कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

न मिलकू न तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: ना मैलिखूना तू लिखे ना कोई और लिखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।
1: Venom Music.

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: मोहब्बत।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

मलकुना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM पे। सो वेल लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपका भी शुमार है उन्हीं लोगों में, सो आप जल्दी से हमें बताइएगा कि आप कहाँ से हमें ट्यून कर रहे हैं और क्या करते करते हमें ट्यून कर रहे हैं, और क्या आपको किसी भी चीज़ में कोई समस्या पेश आ रही है या नहीं। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि है आज फ्राइडे, फ्राइडे यानी जुम्मा का दिन, और जुम्मा मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ एक वीक का एंड नहीं होता बल्कि एक स्पिरिचुअल रीसेट होता है। सो पूरा वीक हम बिजी रहते हैं स्टडीज़ में, जॉब में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और कभी कभार सोशल मीडिया, इन तमाम तर हुराफात में भी, और कभी कभी इसी रश में कि हम खुद को और अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन फ्राइडे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिमाइंडर देता है हम सभी को कि पॉज, ब्रीथ, रिफ्लेक्ट और अपने रब की तरफ वापस आओ। तो आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर नहीं करेंगे बल्कि आज हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करेंगे। सो अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैं, आप, हम सब, मैं अल्लाह के कितने करीब हूँ, मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, कौन सी चीज़ मुझे अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, और क्या मैं उस चीज़ को अल्लाह के हवाले कर सकता हूँ या नहीं। सो वेर एवर यू आर ड्राइविंग, वर्किंग, कुकिंग या बस कॉफ़ी के साथ रिलैक्स कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस्लामिक प्लस रिफ्लेक्टिव इन्फॉर्मेशन की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्राइडे की बहुत खास फजीलत है इस्लाम में। फ्राइडे इस्लाम में एक बहुत ही खास स्पेशल डे समझा जाता है। इस दिन मुस्लिम्स जुमा की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और कुरान में भी सूरत अल जुमा में फ्राइडे को नमाज के लिए बुलाने का एक बहुत ही खूबसूरत दिन करार दिया गया है, और ये हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेसन भी देता है। सो लेसन क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। दुनिया का काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अल्लाह से कनेक्शन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, कभी कभार हम टेक्स्टिंग के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, हम ये तमाम तरह चीज़ें चेक करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं कि अच्छा दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फलाँ की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं से हमें कोई ना कोई गॉसिप मिल जाए, या फिर बहुत सारे इंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते हैं जिनके लिए मैं, आप, हम सभी वक्त निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है उस खास कनेक्शन की जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, तो हम कहीं ना कहीं सुस्ती का मुजाहिरा कर देते हैं। सो इसीलिए फ्राइडे हम सभी से पूछता है कि क्या तुम अल्लाह के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो या नहीं। और ज़रूरी नहीं कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करें तो ही ऐसा लगेगा कि हम अपने गॉड से अपना कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। कभी एक सिंसियर दुआ, तो कभी कुरान की कुछ चंद आयात का तर्जमा पढ़ लेना, कभी थोड़ा सा दुरूद पढ़ लेना, तो कभी किसी को माफ़ कर देना। ये वो तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए तो महज बहुत ही छोटी हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनका रुतबा बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप इनमें से कोई भी एक छोटा सा अमल करते हैं तो हो सकता है कि वो अमल ना सिर्फ आपके आज को बदल दे बल्कि हो सकता है आपके कल को और आने वाले मुस्तकबिल को भी तब्दील कर दे। सो हमेशा कोशिश यही किया करें कि अगर आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है कि आप अल्लाह की याद में मशगूल हो सके, या फिर दुनिया से कट कर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड कर सके, तो इन तमाम तरह छोटे छोटे कामों में से ही कोई एक दा काम कर लिया करें। हो सकता है कि ये आपको उस कदर मेंटली रिलीफ दे जो आपको पूरा वीक दुनियावी काम काज करके भी ना मिलता हो। سو اب ذرا بات کر لیتے ہیں ان کچھ چند ایسے عمل کی جو کہ آپ فرائیڈے کے دن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کریں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ کو روحانی سکون بھی فراہم کریں گے. سو سب سے پہلے فرائیڈے کے دن درود شریف پڑھنا ایک بہت ہی خوبصورت اور خاص عمل سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. تو آج اگر آپ ریڈیو سنتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنی روٹین کو سلو کریں, دل سے درود شریف پڑھیں. آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت لینتھی درود پڑھیں. بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت میں اپنے پروردگار کے قریب ہونا چاہیے. تو کبھی کبھی ہم اپنی پرابلمز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں, لیکن اسی درود شریف کی پاور سے آپ اپنی تمام تر پرابلمز کا سلیوشن نکال سکتے ہیں. ویسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیلی بیسس پر اپنے پرابلمز میں اپنی زندگی میں اس قدر بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ کنٹینیوسلی جب آپ کچھ سوچتے ہیں, کچھ پلان کرتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا تو انسان کے دل میں نگیٹو تھاٹس آتے ہیں. لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں, ہم اپنی اٹینشن کو ایک بیوٹیفل اسپریچول ڈائریکشن دیتے ہیں, تو وہ تمام تر نگیٹو تھاٹس آٹومیٹیکلی پازیٹیو تھاٹس میں بدل جاتی ہیں. اور یہاں ایک امپورٹنٹ ریفلیکشن آپ سبھی کے لیے بھی میرے پاس موجود ہے. سو بیسیکلی ہم دنیا کے لوگوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنے دل کے سکون کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کرتے. سو ہم دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھرپور اقدامات کرتے ہیں. سو آپ کو اس ہستی کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے جو آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تو ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو بھی اپنی محبت کا پہلا رخ اپنے پروردگار کی جانب ہی رکھنا چاہیے. چلیے تو لسنرز, گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک پلس ریفلیکٹیو, یعنی کہ آج ہم بات کریں گے اسلام کی بھی, ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ ریفلیکشنز بھی دوں گی. سو آپ بھی اپنے قیمتی تھاٹس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بذریعہ ہمارے دیے گئے نمبر پر. ابھی فی الحال کے لیے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو ہم آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. اور آپ سبھی سے اتنی سی درخواست ہے کہ آپ نے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے, بندے رہنا ہے اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. سو اسٹے ٹیون ٹو دا فضا 97.1 ایف ایم.
1: It's commercial time.
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कमर्शियल ब्रेक से पहले कि किस तरह से फ्राइडे एक रीसेट या फिर रीस्टार्ट बटन होता है आपकी उस जर्नी का जिसे आपने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है और आप अब बस दुनिया की ज़िंदगी में मगन हो चुके हैं। आपका मेन फोकस बस इसी चीज़ की जानिब लगा हुआ है कि किस तरह से आप दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, बहुत सारी कामयाबी हासिल करें, बहुत खूब आगे तरक्की हासिल करके मज़ीद आसमान की बुलंदियों को छुएं। सो मे बी टुडे इज़ अ गुड डे टू स्टार्ट अगेन, नॉट परफेक्टली बट सिंसियरली। सो वेल लिसनर्स, अब थोड़ा सा पर्सनल रिफ्लेक्शन के मुतालिक भी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि प्रोग्राम में एक अदद खूबसूरत सा सोलफुल सा कलाम शामिल कर लेते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको किस तरह का कलाम सुनना है, तो जैसा कलाम आप सुनना चाहेंगे हम वही कलाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो फिलहाल के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा सोलफुल सा कलाम मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं ये कलाम और कलाम के उस पर हम फिर से कंटिन्यू करते हैं।

सो लिसनर्स, अब बात करते हैं थोड़े से पर्सनल रिफ्लेक्शन की। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपको दिल की किसी भी बात की वजह से थोड़ा सा भी हैवी फील हो रहा है, सो मे बी यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, मे बी स्टडीज़ का प्रेशर हो, या हो सकता है कि आपको जॉब का स्ट्रेस हो। कभी कभार ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि फैमिली टेंशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मे बी किसी रिलेशनशिप ने आपको हर्ट किया हो, या फिर सिंपली आपको खुद समझ नहीं आ रहा हो कि आप इतना टायर्ड क्यों फील कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर प्रॉब्लम का आंसर इमीडिएटली मिलना ज़रूरी नहीं। कभी कभी अल्लाह आंसर से पहले इस बात को यकीन दहानी करते हैं कि इंसान के अंदर सब्र पैदा हो जाए। और सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल भी फील ना करें। सब्र का असल मतलब तो ये होता है कि मुझे मुश्किल समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे फिर भी अल्लाह पर ट्रस्ट है और मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में या फिर आने वाली ज़िंदगी में जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतरी तो ज़रूर छुपी होगी। सो कितनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग है ना, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन स्टिल आप उस चीज़ को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, सो अल्लाह आपके लिए उस चीज़ को बहुत ही इजी कर देता है। वेल लिसनर्स, अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी ज़िंदगी में आज तक जितने भी इंसिडेंट्स रोनुमा हुए हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो कि मैं चाहती थी कि हों और कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो मैं चाहती थी कि मत हों, बट स्टिल वो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी से बस एक ही सबक सीखा है कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमेशा उसकी भलाई के लिए होता है। सो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वही बेस्ट है, वही परफेक्ट है, लेकिन गॉड हम सबको हर वक्त देख रहे होते हैं। सो गॉड प्लान इज़ ऑलवेज द बेस्ट प्लान। सो हमारा प्लान कभी कभार जस्ट एक फ्लावर होता है, लेकिन गॉड्स प्लान इज़ लाइक अ फुल बुके ऑफ फ्लावर्स। तो हमेशा ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द गॉड्स प्लान। सो इस चीज़ के ऊपर जब आप गुमान कर लेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा मुश्किलें तो खुद ब खुद ही आसान होती चली जाएंगी। और मेरा मानना यह है कि जो लोग अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उनके बहुत सारे मामूलाते ज़िंदगी खुद ब खुद ही हल होते चले जाते हैं। सो आप दुनिया की चीज़ों की टेंशन हद से ज़्यादा मत लिया करें, बल्कि इस चीज़ की फ़िक्र किया करें कि जिस ज़ात ने आपको इस दुनिया में भेजा है क्या आपने उसे राज़ी रखा है या नहीं। सो जैसा कि आज फ्राइडे है, आप अपनी दुआ में अपनी वरीज का नाम लेकर अल्लाह से बात करें। फॉर्मल वर्ड्स की कभी भी ज़रूरत नहीं, दुआ के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई परफेक्ट लैंग्वेज हो, बस आप अपने दिल से जब भी दुआ करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर दुआ करते हैं, तो आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हर इंसान की नीयत को देखता है। सो अगर आपकी नीयत में ये होगा कि आपने अपना गॉड कनेक्शन बिल्ड करना है, तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को ज़रूर सुनेगा। सो बात करते हैं फ्राइडे एज अ रीसेट बटन। हम फ़ोन को रीसेट करते हैं जब वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस हम खुद को कब रीसेट करते हैं? फ्राइडे कैन बी अ योर वीकली रीसेट बटन। ए वीक को मेंटली क्लोज करें, अपने आप से पूछें इस वीक क्या अच्छा किया मैंने, कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई, कहीं मैंने किसी इंसान को हर्ट तो नहीं किया, क्या मुझे किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या मुझे किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं इस वीक अपने अल्लाह के करीब रहा हूँ या नहीं। सो ये क्वेश्चन किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है, बिकॉज ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन वी ऑनेस्टली लुक एट अवर सेल्फ। सो जब तक हम खुद को ऑनेस्टी के साथ नहीं देखेंगे, तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं शुक्र की। हमारी लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जिन्हें हम कभी कभार नोटिस ही नहीं करते। हेल्दी मॉर्निंग, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, अ सेफ प्लेस टू स्लीप, एजुकेशन, द एबिलिटी टू सी अदर, एंड सबसे बढ़कर ब्लेसिंग अल्लाह का हमें अपनी तरफ वापस आने का मौका देना। कभी कभी हम सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती,
और जो ऑलरेडी पास है उसकी वैल्यू को बिल्कुल भूल जाते हैं। आज एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं अपने माइंड में। सो बेसिकली हम तीन चीज़ें काउंट करेंगे जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं। इट कैन बी समथिंग वेरी स्मॉल, मे बी योर मदर्स वॉइस, मे बी योर फादर्स अ कप ऑफ टी, मे बी अ फ्रेंड हु चेक्ड ऑन यू, या हो सकता है कि सिंपली द फैक्ट डैट यू वेक अप टूडे। और फिर दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रस्पेक्टिव चेंज कर देता है और वाकई ही आपको रियलाइज़ करवा देता है कि आप उन चीज़ों के पीछे इस कदर मगन हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो आपकी दस्तरस से बहुत दूर हैं, और आप इन चीज़ों को तो देख ही नहीं रहे जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। वेल, अगर मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, सो आज मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, मैंने अपने बहुत सारे चाइल्डहुड ड्रीम्स को फुलफ़िल किया है, और आज जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कभी कभार मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि माय चाइल्डहुड सेल्फ इन तमाम तरह चीज़ों के लिए कितना ग्रेटफुल होता अगर ये तमाम तरह चीज़ें उसे उस वक्त मिलती। बट स्टिल, क्योंकि मुझे आज ये तमाम तरह चीज़ें मिल रही हैं और मेरे अब ड्रीम्स भी बड़े हो चुके हैं, तो मैं उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखती। सो आपको हमेशा अपने आसपास को ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए और उन ब्लेसिंग्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। जो पास मौजूद होता है उसे नहीं देखते, और जो चीज़ मौजूद नहीं होती बस उसी की दौड़ में लगे रहते हैं। सो सबसे पहले आप शुक्र अदा करिए उन तमाम तरह चीज़ों का जो आज आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो इंसान को अल्लाह ताला और मौका फराहम करता है और नेमतों से नवाजता है। सो शुक्र का दामन कभी भी हाथ से मत जाने दिया करें। सो वेल लिसनर, जैसे कि आज फ्राइडे है, सो हम फ्राइडे के हवाले से बात कर रहे थे कुछ इस्लामिक प्लस योर पर्सनल रिफ्लेक्शन की। सो आप कुछ ऐसे आदात हैं जिनको आप फ्राइडे को कंटिन्यू करके अपने इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो फ्राइडे को कुरान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैबिट हो सकती है। अगर आप रेगुलरली कुरान नहीं पढ़ते तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक पेज पढ़ें, कुछ आयात पढ़ें या फिर कुछ ट्रांसलेशन की लाइंस, और फिर एक मिनट के लिए सोचिए ये मैसेज मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। सो कुरान सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, बल्कि इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ गाइडनेस एंड रिफ्लेक्शन। हम दुनिया में डायरेक्शंस के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइफ की डायरेक्शन के लिए ह्यूमन गाइडेंस बेहद ज़रूरी होती है। और कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया टेम्प्रेरी है और अल्लाह के साथ कनेक्शन ही मेरी आपकी हम सब की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो आप भी कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, लेकिन एक मामूली ज़िंदगी बनाएं जहां आप बहुत सारी इबादत, अगर आप नहीं कर सकते तो आप थोड़ी इबादत से शुरू करें, लेकिन इबादत ज़रूर किया करें, क्योंकि इबादत ही बेहद ज़रूरी है और हमारी असल ज़िंदगी का मकसद है। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा सोलफुल सा कलाम। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम, और कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर गपशप का सिलसिला जारी करेंगे, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक से वापसी पे तो हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी ब्यूटी टिप्स की। तो फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम।

लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आके बैठते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM। हम बस यूं गए और यूं आए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot, search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। तो लिसनर्स, फजा 97.1 FM एंड टैप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम, यानी कि आपका अपना कंफर्ट प्लेस द दीवा डायलॉग। सो द लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कमर्शियल ब्रेक के उस पर हम स्टार्ट करेंगे आज का द मॉर्निंग द फ्राइडे को सेगमेंट। सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे ब्यूटी और सेल्फ केयर की, लेकिन सिर्फ मेकअप और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की नहीं, क्योंकि ब्यूटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होता। कभी कभार ब्यूटी का मतलब फ्रेश फेस, क्लीन हेयर, अच्छी स्लीप, हाइड्रेटेड स्किन और सबसे बढ़कर अपना ख्याल खुद रखना। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि रियल ग्लो लेके आती है। तो अगर आप घर पर हैं, चाय या कॉफ़ी के साथ मेरी कंपनी इन्जॉय कर रही हैं, तो आज ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ यूनिक ब्यूटी टिप्स। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि इन ब्यूटी टिप्स से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। सो सबसे पहले सिंपल लेकिन अंडररेटेड ब्यूटी टिप की बात कर लेते हैं। हम दिन भर अननॉलेजली कई मर्तबा अपने फेस को टच करते रहते हैं, फ्यून यूज़ करते हैं सोचते हुए, हम साथ ही साथ अपने फेस को टच करते हैं, कभी कभार हम बाल सेट करते हुए, लेकिन हमारे हैंड्स नेचुरली ऑयल, डर्ट, बैक्टीरिया, ये तमाम तरह अनासर से भरे हो सकते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आपने अपने फेस को अननेसेसरली टच बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये एक अच्छी स्किन केयर हैबिट नहीं होती। सो जैसे ही आप अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करेंगे कि आप बिला वजह ना तो आप अपने फेस को टच करेंगे या फिर फेस को हाथ लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी स्किन के काफ़ी हद तक मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सो आई नो मेरी वो तमाम तरह डीवाज, यानी कि वो हमारी तमाम तरह लिसनर्स जो कि डेली बेसिस पर जॉब करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, आई नो आप सभी को मालूम होगा कि यूके का इन्वायरमेंट किस कदर रशी होता है। सो डेली बेसिस पर जब आप घर से बाहर निकलती हैं, आपको ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना पड़ता है, समटाइम्स आप डिफरेंट जगह पर जाते हैं, कहीं आपका हाथ कहीं ना कहीं लगता रहता है। सो इन सब के बीच में अगर आप वही हाथ अपने फेस पर डैप करते हैं या फिर हल्का सा भी टच करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे स्वीयर एक्नी इश्यूज हो सकते हैं। सो मोस्टली लोगों को जो एक्नी के इश्यूज होते हैं वो इसी हैबिट की वजह से होते हैं। सो आपने कोशिश करना है कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो आज जैसे कि फ्राइडे है, सो आपके लिए, आप सभी महिला के लिए मेरे पास एक फ्राइडे चैलेंज है। सो आज आपने नोटिस करना है कि आप दिन में कितनी मर्तबा अपने फेस को टच करती हैं, और फिर धीरे धीरे आपने इस हैबिट को रिड्यूस करना है। सो टिप नंबर टू जो आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ, विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटी टिप, आपने स्किन केयर लेयरिंग को हमेशा सिंपल रखना है। सो ब्यूटी इंडस्ट्री में हम इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, कभी कभी लगता है कि स्किन केयर करने के लिए आपको 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्चुअली सिंपल रूटीन भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। सो बेसिक आइडिया ये है जो मैं अपने सभी लिसनर्स को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, हाइड्रेटेड रहे और ब्यूटीफुल दिखे, सो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ क्लिंजर एंड देन मॉइस्चराइजर, और फिर बारी आ जाती है अ गुड सनस्क्रीन, और अगर कोई ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ करना हो तब भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या आपकी स्किन टाइप से वो प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं, और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमेशा आपने उसे अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है। सो वेल लिसनर्स, अगर आपकी कोई सी भी स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है या फिर है कॉम्बिनेशन टू मीडियम स्किन, सो बेसिकली आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप्स ही फॉलो करनी है। फर्स्ट क्लिंजर। अच्छा, क्लिंजर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूरा दिन, जैसा कि मैं, आप, हम सभी या फिर हमारी वो तमाम डिवाइस जो कि घर से बाहर निकलती हैं, हाउस जॉब करती हैं, कहीं पर भी जाती हैं,
सो आई नो आपको डेली बेसिस पे मेकअप पुट करना पड़ता है, यू लुक प्रेजेंटेबल टू लुक इनहेंस, तो इस सूरत में क्लिंजर आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्लिंजर क्या करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को टोटली क्लीन करता है। सो इससे ये होगा कि आपको एक्ने इशू नहीं बनेगा, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू नहीं बनेगा। और मॉइस्चराइज़र इसलिए ज़रूरी होता है कि समटाइम्स हम जैसा कि डेली बेसिस पे घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र आपकी हाइड्रेशन को लॉक करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। फिर बारी आ जाती है इस तपती हुई धूप से बचने की। सो जैसा कि आप घर से बाहर तो निकलना है क्योंकि आप हैं एक वर्किंग वूमेन, सो यू हैव टू नीड अ गुड सनस्क्रीन। अच्छा, आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि आपने वो सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है जिसमें SPF 50 प्लस प्लस हो, क्योंकि SPF 50 या फिर 60 प्लस प्लस इनफ होता है आपको एक गुड सन प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर आप इससे कम की कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं जैसे कि SPF 30 प्लस प्लस, तो इट्स नॉट इनफ फॉर योर स्किन, सो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हर वायरल स्किन केयर इंग्रेडिएंट। सो बेसिकली आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है कि मोस्टली आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारे वायरल स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। सो कभी भी आपने ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना, जो चीज़ हो सकता है एक पर्सन को सूट कर रही हो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी उसी तरह से सूट करे या आपकी स्किन बैरियर उसको उस तरह से एक्सेप्ट करे। सो मेक श्योर करना है कि आपने बिल्कुल भी स्किन केयर स्टेप्स को ज़्यादा नहीं करना, और जो तीन बेसिक स्टेप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं आपने इनको फॉलो करना है। वेल, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आप एक ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो, बट इफ़ यू हैव अ ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन तो आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, सनस्क्रीन में भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी अगर ऑयली स्किन है तो ड्राई सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, एंड इफ़ यू हैव अ एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप कोई भी ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकती हैं। सो वेल लिसनर्स, ये तो हो गई हमारी दो ब्यूटी टिप्स, और भी मज़ीद बहुत सारी टिप्स हैं मेरे पास आप सभी के लिए, क्योंकि हम हर फ्राइडे को बात करते हैं द फ्राइडे क्लो की, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ अलग, कुछ न्यू और कुछ यूनिक ब्यूटी टिप्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी डिवाज जिनके लिए ये प्रोग्राम ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया गया है इनसे इस्तेफादा हासिल करें। सो अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सी नात, तो आप भी इसको सुनेंगे और इसके उस पार हम दोबारा से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपसे शेयर करूंगी मज़ीद ब्यूटी टिप्स। सो सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम।

चीज़ लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की जानिब. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी टिप इज कि आप हमेशा अपने स्किन बैरियर का ख्याल रखें. आजकल स्किन केयर में एक फ्रेज बहुत सुनने को मिलता है, आप सभी को भी मिलता होगा, स्किन बैरियर. सो मैं आपसे शेयर करती हूँ उसका सिंपल मीनिंग. सो सिंपल वर्ड्स में स्किन की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को आप एक नेचुरल शील्ड समझ सकती हैं. अगर हम बहुत हार्श प्रोडक्ट, एक्सेसिव स्क्रबिंग या फिर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा स्किन बैरियर इरिटेट होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है. इसीलिए आप हमेशा एक गोल्डन रूल को याद रखें, स्किन को क्लीन करना है, कभी भी पनिश नहीं करना. सो इसी के लिए आप हर रोज एग्रेसिव स्क्रबिंग कभी भी मत किया करें. जेंटल स्किन केयर ऑफन मेक्स मोर सेंस देन डूइंग टू मच. सो अगर आपने स्क्रबिंग करनी भी है तो आप वीक में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं. इट्स इनफ फॉर योर स्किन रैदर देन कि आप इतना ज़्यादा स्क्रबिंग करें कि आपके जो आउटर लेयर है वो ही डैमेज हो जाए और यू फील लाइक कि ओह मैं तो स्क्रबिंग कर रही थी कि मेरी स्किन एक्सफोलिएट होगी, स्किन स्मूथ होगी, ये तो स्किन मज़ीद हार्श हो गई है. सो आपकी स्किन बेहद सेंसिटिव होती है, इसका ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि आप एक्टिव्स का जब भी कभी इस्तेमाल करें. जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आपको डिफरेंट तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखते हैं जिसपे बहुत सारे एक्टिव्स भी होते हैं, सैल्सिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, नाइसिनामाइड और भी इस तरह के बेहद प्रोडक्ट्स. सो मैं तो हमेशा इन तमाम तरह प्रोडक्ट्स को अवॉइड करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि माई स्किन लुक्स गुड, बट इट डजेंट मीन कि माई स्किन लुक्स टोटली अ फुल लेयर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ माई क्लियर स्किन. और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं. सो हमेशा से स्किन केयर का एक बेस्ट रूल ये भी होता है कि जब आप स्किन केयर कर रहे हों तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स ना हों.

अब मैं आपसे एक अदद और ब्यूटी टिप शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो स्किप कर देते हैं इस रूटीन को। अब एक ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि बॉटल में नहीं मिलता, सो द नेम इज़ स्लीव। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तरह दिखे, प्रॉपर रेस्ट भी उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है। सो इसके लिए अपनी रूटीन में सफिशेंट स्लीप को इम्पोर्टेंस दें, और जैसा कि आज फ्राइडे भी है सो एक रीसेट करें, फ़ोन थोड़ा साइड पर रखें, रूम में कंफर्टेबल हों और अपने माइंड को भी रेस्ट दें, क्योंकि टायर्ड माइंड और टायर्ड बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेकअप से फ्रेश कभी भी नहीं दिख सकती। इफ़ यू वांट कि आपकी स्किन नेचुरली खूबसूरत दिखे तो आपने इन तमाम तरह टिप्स को फॉलो करना है। सो टिप नंबर 1 जो कि मैंने आपसे शेयर की कि आपने स्किन को बिल्कुल भी टच नहीं करना, सो आज से आपने मेक श्योर करना कि आप बार बार अपने फेस को बिल्कुल भी हाथ मत लगाएं। एंड द टिप नंबर 2 इज़ कि आपने स्किन केयर के नाम पर कभी भी एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं करनी। सो जस्ट 3 बेसिक प्रोडक्ट्स ऑल यू हैव टू नीड इज़। थर्डली ये कि आपने अपने स्किन बैरियर का ख्याल रखना है, कभी भी उसको डैमेज नहीं होने देना। सो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप स्किन केयर करें बट आपकी स्किन डैमेज ना हो। एंड लास्टली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए और आपको दिन में 7 से 8 ग्लास पानी लाजमी पीना है और बी हैप्पी। सो ये वो तमाम तर ब्यूटी टिप्स थे जो कि बेहद सिंपल हैं, इनको करने के लिए आपको कोई भी मेहनत दरकार नहीं, लेकिन अगर आप इस एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में आपको एक प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देगा। योर स्किन लुक्स सो अमेजिंग एंड योर स्किन लुक्स मोर फ्रेश। सो आई होप आपको द फ्राइडे ग्लो का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप भी कुछ हमसे शेयर करना चाहते हो या फिर आपको किसी भी किस्म की कोई स्किन केयर टिप चाहिए हो, सो डू लेट मी नो 01157100971। सो थ्रू दिस नंबर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सो दे लिसनर्स एंड माई लवली रिवाज, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर जहां हम शुरू करेंगे द फ्राइडे स्पाइस किचन, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आई हूं कुछ अलग कुछ मुनफरिद सी रेसिपी। सो वो जानने के लिए आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है, हम बस यूं गए और यूं आए। So stay tuned to the Fuzza 97.1 FM with your favorite RJ Zainab Fatma.

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं

आप किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं और किस तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भी है खूबसूरत और बाअसर तो आप बनना चाहते हैं रेडियो फजा 97.1 FM की इस फैमिली का हिस्सा। सो उसके लिए सिंपली आपको जाना होगा www.radiofaza.com.uk इस वेबसाइट पे। सो इस वेबसाइट पे जाके आपने बस हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो आप हमें ना सिर्फ ट्यून कर सकते हैं बल्कि जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला या फिर रेडियो फजा 97.1 FM पर आने वाले तमाम तर नए प्रोग्राम का शेड्यूल। और आप सभी की आसानी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर। सो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जल्दी से जाइए एप्पल स्टोर पर और अगर आप हैं आईफोन यूज़र सो आपने जाना है एप्पल स्टोर। वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और आने वाली पहली एप्लीकेशन जिसका आइकन है पर्पल कलर का, जी हाँ यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस और आप किसी भी जगह हमें बआसानी ट्यून कर सकते हैं। और हमारे वो सभी लिसनर्स जो कि ड्राइव कर रहे होते हैं अक्सर औकात या फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा होते हैं सो आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और वहाँ पर हमें हमारा साथ दे सकते हैं। सो ये लिसनर्स प्रोग्राम में वक्त हो चुका है द स्पाइस किचन की जाने बढ़ने का जहाँ हर दिन मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए कुछ नई मुनफरिद और यूनिक रेसिपीज। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। सो रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे, आप भी गेस कर सकते हैं कि क्या है वो रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अगर कोई भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो उसको कर दीजिए स्किप, अपनी नोटबुक डायरी या फिर कॉपी पेंसिल कर लीजिए रेडी क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो जितनी देर में आप अपनी नोटबुक कॉपी या फिर डायरी रेडी करते हैं उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा सोलफुल सा कलाम आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़ में। सो ये कलाम सुनते हैं और कलाम के उस पार रेसिपी को करते हैं कंटिन्यू।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

जी दिन है जुम्मे का, बड़ा ही खूबसूरत सा दिन और एक नई सुबह हमारे लिए, एक नए दिन का आगाज़ होता है। और हर सुबह ज़िंदगी हमें खाली सफ़ा देती है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी लिखते हैं। अब हम ये हमारे हाथ में होता है कि हम उस पर मायूसी लिखते हैं या फिर एक खूबसूरत सी कहानी। सो हम मिलकर एक खूबसूरत सी कहानी ही लिखेंगे आज के दिन के हवाले से। दुआ करेंगे सबके लिए, उन लोगों के लिए जो हमारी नज़रों से हमारी पहुँच से बहुत दूर हैं, उनके पास जाने का हमें मौका नहीं मिलता, मिलने का मौका नहीं मिलता। इट्स मीन के जो परदेश में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे लिए वो परदेश है और उनके लिए हम परदेश हैं। सो इसी तरह का सीन है। तो हम सब के लिए दुआ करेंगे, अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, दूसरों के लिए। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। सो किसी लालच में नहीं, बल्कि हम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से दुआ को प्रोग्राम में शामिल करेंगे सबके लिए। बट आज जो है वो जुम्मा और मुबारक का दिन है और बड़े खूबसूरत सा दिन है। इस खूबसूरत से दिन के सदके अल्लाह पाक जो है वो मुबारक की ज़ात हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और हमें जो है वो दूसरों की मदद करना जो है वो उसमें भी थोड़ी हमें अकल आए। बट हम लोग जो है वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। बट दुआ के लिए जो है वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो यकीन माने कि आपको भी खुशी मिलती है और दूसरों को भी खुशी मिलती है। कोशिश ये रहेगी कि आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कर सबसे पहले बता देते हैं। 01157100971 इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। साथ ही में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजी किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सब वो आपको वहाँ से मिल जाएगी।

या फिर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ऊपर की जात ने हमें एक बड़े खूबसूरत सा वोकल बॉक्स दिया होता है और इस वोकल बॉक्स को इस्तेमाल में लाना ये हमारे पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि क्या बोला था अभी मैंने, हाँ अभी मैंने बोला था कि हर सुबह नई ज़िंदगी, हर सुबह ज़िंदगी हमें एक खाली सफ़ा देती है। अब ये हमारे हाथ में है कि हाँ हम उस पर मायूसी लिखते हैं या फिर एक नई कहानी। सो मिलकर हम इस पर एक नई कहानी लिखेंगे, वो कहानी जो हमें भी नहीं मालूम, वो कहानी जो अभी प्रोग्राम में मैं शामिल करूँगी, वो कहानी जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये कहानी लेकर मैं आगे चलूँगी, बट जहाँ पर होगा आपका साथ वहाँ पर कहानियाँ ही कहानियाँ होंगी। और कहानियों के साथ साथ अगर आपकी गपशप, आपकी मैसेजेस, आपकी खूबसूरत सी बातें मुझ तक पहुँचेंगी, मैसेजेस मुझ तक पहुँचेंगे, तो यकीन माने कि मेरा जो मकसद होगा ना प्रोग्राम करने का, डेफिनेटली वो पूरा हो जाएगा। बस आप यूँ कीजिएगा कि प्रोग्राम में शामिल कोई कलाम प्ले करवाना चाहें तो मुझे वो लाजमी बता दीजिएगा, या फिर कोई कलाम आप मेरी पसंद का सुनना चाहें तो वो बताइएगा। सुबह उठते साथ, वो कहते हैं ना, सुबह सवेरे उठकर कोई ऐसा ट्रैक और कोई ऐसा कलाम जो आप सुनते हो, मोस्टली फ्राइडे के दिन जब वो कलाम ही हम प्ले करते हैं, ट्रैक्स की फरमाइश हमारे पास मौजूद होती है बट हम उनको प्ले नहीं करते, तो हम आपको बता देते हैं कि आप आज के दिन जो है 2 बजे तक मेरे आपके साथ जो टाइम मेरा आपका टाइम रहेगा, इसमें आप मुझसे कलाम की फरमाइश कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है अ फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, हर सुबह ज़िंदगी हमें एक खाली सफ़ा देती है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें मायूसी लिखते हैं या फिर एक खूबसूरत सी कहानी लिखते हैं। सो कभी कभार हमें खुद ही नहीं मालूम होता कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, बट बहुत सी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में खुद बहुत चेंज होती रहती हैं। अभी प्रोग्राम का आगाज़,

हम कर रहे थे कि प्रोग्राम में जो है वो टॉपिक शामिल करवाया मैंने बड़े खूबसूरत सा, और इसके हवाले से डिस्कस हम करेंगे। तकरीबन मेरे और आपके दरमियान 2 घंटे का टाइम होता है, उसके अलावा उसके बाद मैं आपसे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, यानी कि वक्त से चलती है, और वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर जाना तो पड़ता है। पर 2 दिन मेरी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारे दरमियान एक नया आरजे मौजूद था और आपने उनके प्रोग्राम को भी पसंद किया होगा और मैंने खुद उनके प्रोग्राम को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि कभी कभार कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको सुनकर आप बहुत इंजॉय करते हैं, और कभी कभार कुछ आवाज़ें जो है ना वो बेस्वादी कहते हैं ना जो वो होती हैं, और उसको सुनने के बाद सर में दर्द होने लग जाता है। और मेरे ख्याल में अभी तक मैंने कोई ऐसी आवाज़ सुनी नहीं है, जितने भी मेरे यहाँ पर रेडियो में प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं उसके हवाले से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं लेकर ये कह सकूं कि यार इसकी आवाज़ सुन के जाना मेरे सर में दर्द होता है, क्योंकि मैं किसी का प्रोग्राम सुनती ही नहीं हूँ। सोवल प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका अगर आपको बता देते हैं, नंबर बड़े खूबसूरत है 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। इसी के साथ साथ गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। हाँ, और उसी के साथ साथ ट्रैक में आज प्रोग्राम में प्ले नहीं करूँगी, क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन जो है वो कलाम ही प्ले किए जाते हैं मोस्टली। मेरे बाद जो अगर प्रोग्राम आपके साथ रहेगी, आप ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी, उसमें आप ट्रैक प्ले करवा सकते हैं, या फिर आप अभी के लिए जो है वो मुझे कलाम बता दें वो मैं प्ले कर दूँ, क्योंकि जिस तरह अब हम रोज़ाना उठकर कोई तो ट्रैक सुनते ही होंगे जिसको सुनकर हमारा दिन अच्छे से गुजरता होगा। जाहिर सी बात है ज़िंदगी में कोई एक ऐसा गाना ज़रूर होता है जिसको सुन के इंसान बोर नहीं होता, इसी तरह कोई कलाम भी होगा जो आपका मोस्ट फेवरेट होगा। सो मुझे वो लाजमी बता दीजिएगा, मैं प्रोग्राम में इसको ज़रूर शामिल कर दूँगी।

लेकिन उसी के साथ साथ जब तक आप मुझे बताएंगे अपने मनपसंद कलाम, तब तक आप सुनिएगा सलूराज के पसंदीदा कलाम, क्योंकि मेरी भी जो प्लेलिस्ट है ना वो काफी बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। सो आइए प्रोग्राम का आगाज करेंगे खूबसूरत से कलाम के साथ। इस कलाम के उस पार में रहेगी आपसे मुलाकात, वापसी पे आकर अपने टॉपिक को हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए यही बोलूंगी कि स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक है ठीक 2 बजे तक। अभी मैंने नोटिस किया कि कलाम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंथी हो गया, बट खैर कोई नहीं। इसी के साथ अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेश स्टार्ट, सो इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि जब हमें महसूस होता है कि बहुत कुछ जो है वो गलत हो गया है, लेकिन हर नया दिन हमें दोबारा आगाज़ करने का एक मौका देता है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने माजी को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ें। जो गलतियां पहले हुई हैं उन्हें अपनी कमजोरियां बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाकर उनको यूज़ किया जाए।
1: अब इंसाफ क्या होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा।
0: सवाल याद रखें कि आपकी जो एक दिन की नई शुरुआत है ना, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। किस तरह से बेहतर बना सकती है कि हम बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में जो है वो सोच लेते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम सोच लेते हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। कभी कभार जो एक नया फैसला इंसान की एक नई आदत, एक अच्छी सोच, या सिर्फ ये इरादा कि अब मैं खुद को बेहतर बनाऊँगा, सो ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है ये। सो याद रखें कि शुरुआत के लिए बेहतरीन वक्त वो नहीं जो गुजर गया, बल्कि वो लम्हा है जिसमें आप फैसला करते हैं कि अब आगे बढ़ना है। अब अगर बात की जाए कि नई शुरुआत क्यों ज़रूरी है, नई शुरुआत ज़रूरी होने के लिए बहुत से ऐसे मतलब होती हैं, बहुत सी बातें, बहुत सी वजूहत होती हैं। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कभी जो है हालात हमारे हक में होते हैं और कभी कभार हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मुश्किल वक्त का मतलब ये नहीं कि हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो गई है। नहीं, बाज़ूकत हमें यही मुश्किलात हमें जो है ना एक नए और एक बेहतरीन सफर की तरफ लेकर जाती हैं, और हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। एक नई शुरुआत हमें ये सिखाती है कि गुजरे हुए कल को दोबारा जो है वो बार बार सोचने की बजाय आज पर तवज्जो दी जाए, अपनी गलतियों से सबक लें, मगर जो है ख़ुद को हमेशा जो है वो कसूरवार ना ठहराएं। अच्छा, बहुत से हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद होंगे भाई जो हर गलती का जिम्मेदार खुद को ही ठहराते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक किस्म का इंसान को फोबिया होता है, वो सीन हो जाता है कि यार ये मेरी वजह से हुआ है, ये भी मेरी वजह से हुआ है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज होता रहता है, बट नई ज़िंदगी में छोटी छोटी अच्छी सोच जो है वो तब्दीली ला सकती है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप अच्छा सोचने की कोशिश करें तो। अपने मकसद को दोबारा तरतीब दें और एक नए जज्बे के साथ जो है आगे बढ़ें। नई शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बदल जाए। कभी कभी जो है वो नई शुरुआत सिर्फ अपनी सोच बदलने से होती है। वही ज़िंदगी, वही लोग और वही हालात होते हैं, लेकिन हमारा जो रवैया होता है वो बदल जाता है, तो ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ा भी बदल जाता है। अगर बात की जाए कि अगर हमने माजी में जो है वो बहुत सी गलतियाँ की होती हैं, अगर माजी ने आपको कुछ दुख दिए हैं, तो उसे अपनी जो है वो मंजिल ना बनाएं, बल्कि आप ऐसा करें कि उसे अपना सबक बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का खूबसूरत बाब जो है ना हमेशा वही है, वहीं से शुरू हो सकता है जहाँ से आप फैसला करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में अब फैसला ले लेना चाहिए। सो माजी से सबक हासिल करें, माजी सबक हल में जो है वो कोशिश करें, मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। नई शुरुआत का असल मतलब जो है वो बहुत बहुत सिंपल है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो। नई शुरुआत सिर्फ जो है वो ये सोचना नहीं है कि हम लोग बेहतर बन जाएंगे या नहीं बन सकते। अब बहुत से लोग इस चीज़ को सोच कर आगे बढ़ेंगे कि हम बेहतर बन सकते हैं, लेकिन एट दी एंड बीच में अगर कभी ना कभी उनको ऐसा फील हो जाएगा कि नो यार, ये मेरी लाइन नहीं है जिस पर मैं चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लेते हैं, तो फिर वो चीज़ होकर ही रहती है। कभी कभी इंसान एक ही जगह इसीलिए रुका रहता है क्योंकि वो माजी की नाकामियों में, गलत फहमियों में, या दूसरों की बातों को अपने साथ लेकर चलते हैं। सो दूसरों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई बोलता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ना बोले। हर इंसान को जो है ना वो मौका चाहिए होता है आपके किरदार पर, आपके बारे में बात करने का और आपको मजीद समझाने का, समझाने पर समझाने का, ये भी समझो, ये भी समझो। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से जो है वो लेकर चलते हैं। खैर अभी जो है वो प्रोग्राम में मेरा आपके दरमियान एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, सो अभी इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, वापसी भी आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सो स्टे ट्यून फर्दर इन 7.1 FM एंड डेफ। अभी तक के लिए ब्रेक को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उसी के साथ आज का जो टॉपिक है आप फ्रेश स्टार्ट, सो इसके बारे में अगर कोई डिस्कशन कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाना चाहें तो लाजमी पहुँचाइएगा, या फिर आज के दिन से कोई कोटेशन मुझ तक पहुँचाना चाहें तो वो भी पहुँचाइएगा, बट अभी के लिए जो है वो आइए बढ़ते हैं।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

साथ वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर हम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सरोराज की, जहां पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सोलह हमारा आज का जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम एक वर्ष बेकार हो गई थी, अ फ्रेश स्टार्ट। सो नई शुरुआत का असल मतलब, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे नई शुरुआत का असल मतलब। नई शुरुआत सिर्फ जो है वो एक नई तारीख आने का नाम नहीं होता।

किसी भी उम्र में जाके कर सकते हैं जब हमें अकल आती है। सो नई शुरुआत के चंद खूबसूरत पहलू अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ अपनी तरफ से जो भी मुझे पता है। यहीं जाने के 2 दिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं है और 2 दिन में मेरे दिल में मेरी दिमाग में इतनी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, इतनी बातें हैं कि मुझे मतलब समझ नहीं आ रही कि मैं टॉपिक डिस्कस करूँ या फिर अपनी बातें लेकर बैठ जाऊँ आपके साथ। खैर कोई बात नहीं, 2 घंटे का टाइम अभी हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा वक्त है। खैर बात कर रहे थे नई शुरुआत के चंद खूबसूरत पहलू की। आप उनमें देखा जाए तो खुद को एक नया मौका देना। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप अपने दिल में ये बात रखते हैं कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये चीज़ है कि नो ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, तो वो फिर आप वाकई में ही नहीं कर पाएंगे। सो पुरानी सोच को बदलना जो है ये बीच में आता है। कभी हालत ऐसी होती है कि नहीं दिल करता कुछ करने का, सिर्फ हमारी सोच हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा सकती है। अगर हम उस वक्त उस हालत में किसी एक चीज़ को सोच सकते हैं तो वो ये कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं।

छोटा कदम, मेरी जबान फिसल रही, आई डोंट नो क्यों, बट शायद मेरी दो दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है इस वजह से। खैर गलती कोई हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, माजरत, बट मजाक जो है वो आपके साथ चलता रहेगा। अब आप मेरी इस बात का मजाक मत बना लीजिएगा, सलू राज ने ये बात बोली है, सो इस चीज़ को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। सो बात करते हैं कि छोटा कदम उठाना, नई शुरुआत हमेशा बड़े फैसले से नहीं होती, एक छोटी सी अच्छी आदत भी तब्दीली का आगाज बन सकती है। सो किसी छोटी सी चीज़ को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आएं, आपके लिए वो तब्दीली का हिस्सा बन सकती है। ख़ुद पर एतमाद करना, दूसरों की राय अहम हो सकती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसलों में अपने मकसद और अपने इकदार को समझना भी ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और पर्सन के हाथ में दे देंगे, किसी और शख्स के हाथ में दे देंगे, तो वो फिर उसको अपनी मर्ज़ी से खींचना शुरू कर देगा। सो ज़िंदगी में कभी देर नहीं होती, अगर एक रास्ता ख़त्म हो गया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सफ़र भी ख़त्म हो गया। हाँ, शायद यही वो लम्हा हो जहाँ से आपकी एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत, एक नई बेहतर और ख़ूबसूरत शुरुआत होने वाली हो। नई शुरुआत का मतलब है कि अपने आप को दोबारा से एक नई तरह से लेकर चलना, एक वो इंसान बनना जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हम अक्सर समझते हैं कि नई शुरुआत के लिए ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला करना होता है। ना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना होता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि कभी एक नया फैसला, नई सोच और ख़ुद से क्या हुआ एक वादा भी नई शुरुआत बन जाता है। कभी इंसान दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी ख्वाहिशात भूल जाता है, और नई शुरुआत का एक मतलब ये भी है कि इंसान खुद से पूछे कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, कि क्या मैं हकीकत में अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सवाल इसी के साथ साथ टॉपिक हमारे दरमियान चल रहा है, और फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। सो अभी मेरे पास एक छोटा सा मैसेज रिसीव हुआ है, और मेरी ये बड़ी खूबसूरत लिसनर है, और रोज़ाना मेरा इनके साथ कांटेक्ट होता ही होता है, लाजमी होता है, और उन्होंने मुझे फीडबैक देना होता है। चांदनी जी हमें सुन रही है। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप कहाँ थी इतने दिनों से? ओह सच, मैं यहाँ नहीं थी इतने दिनों से, मेरा दो दिन बाद आपसे जो है वो रब्ता हुआ है। हर कोई बात नहीं, चांदनी जी ने भी एक छोटा सा सवाल किया कि माजी को कैसे देखना चाहिए। मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ, अपना एक आइडिया दूँ, तो माजी को भूलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे चुकी हैं, उसे अपनी आने वाली ज़िंदगी का फैसला ना बनने दें। गलती सही हो सकती है, और गलती को आप सबक समझें, ना कि गलती समझें। जब आप उसको गलती समझेंगे तब आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, गलती को सबक समझें, नाकामी को जो है तजर्बा समझें, इंतज़ार को जो है वो तैयारी समझें, और नया कदम जो है ना वो नई उम्मीद है।

कभी कभी ज़िंदगी हमें दोबारा शुरू करने का मौका इसलिए नहीं देती क्योंकि हम नाकाम हुए होते हैं, बल्कि हम अपने दिमाग में जो चीज़ सोच रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए कभी कभार जो है कुछ लोगों को ज़िंदगी एक नया मौका दे भी देती है। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो ये सोचते हैं कि अब हम पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, जो लोग इसे गलती नहीं बल्कि एक सबक मानते हैं। नई शुरुआत का मतलब माजी को ख़त्म करना नहीं बल्कि अपने माजी को जो है पीछे रखकर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाना है। सो आपने नोटिस किया होगा लिसनर कि हम अक्सर जो है ना नई शुरुआत के लिए किसी ख़ास दिन महीने या मौके का इंतज़ार करते हैं। मेरे ख्याल में लेकिन ये हकीकत नहीं है, नई शुरुआत के लिए किसी ख़ास तरीके की ज़रूरत नहीं होती। इंसान जब चाहे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने रास्तों को बेहतर बनाने का फ़ैसला खुद कर सकता है। आप देखा जाए तो जो गुजर गया उसे कबूल करें, माजी को तब्दील नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी से जो है वो एक सबक सीखा जा सकता है, एक चीज़ सीखी जा सकती है भाई कि हमने जो गलतियां जो चीज़ें पहले की थी वो हम आगे जाके ना करें। खुद को दूसरों के साथ मुआजना करना, हर शख्स का सफ़र मुख्तलिफ होता है और किसी और की रफ्तार को अपनी कामयाबी का पैमाना ना बनाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है या उसने क्या सोचा हुआ है, हाँ लेकिन अगले की कामयाबी देख रहा हमें बिल्कुल भी जो है ना वो सड़ना कूड़ना नहीं चाहिए। जब आप किसी का भला सोचते हैं ना तो ऊपर वाले की ज़ात आपका भी भला करती है, यकीन माने कि वो ज़ात बड़ी बेनियाज है, जब आप उसे मांगेंगे ना तो वो आपको ज़रूर देगा, वो तो उनको भी देता जो उसे मांगते नहीं हैं, जो उसे याद नहीं करते। छोटा कदम उठाना भी बड़ी बहादुरी की बात होती है, बड़ी तब्दीली अक्सर छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होती है, और अपनी हम इन कोशिशों को मज़ीद कंटिन्यू रख सकते हैं अपने आप से जुड़े रह के, मतलब आप किसी के साथ इस चीज़ को शेयर ना करें तो फिर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। खुद से अच्छी गुफ्तगू करें, अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि एक मुश्किल मरहला जो है ना पूरी ज़िंदगी की नुमाइंदगी नहीं करता। अगर आज आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा, हाँ तो रुक कर आप ये ज़रूर सोच सकते हैं कि शायद आपको हारने के लिए नहीं बल्कि एक नए रास्ते पर चलने के लिए रोका गया है। हर अख्ताम के बाद जो है एक नया आगाज़ मुमकिन होता है। अपने आज को इतना कीमती बना दीजिए कि आने वाला कल जो है ना आपके लिए आज पर फ़ख्र करे। अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई सोच, एक नया कदम और एक नई उम्मीद। कभी कभी ज़िंदगी हमें दोबारा शुरुआत करने का एक मौका देती है और हमें उस चीज़ को जो है वो अपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, और कभी कभार ज़िंदगी हमें दोबारा शुरू करने का मौका नहीं देती बल्कि हमें एहसास दिलाती है कि हम हमेशा से दोबारा शुरू करने के काबिल थे या नहीं। और याद रखें कि नई शुरुआत के लिए मुकम्मल तौर पर जो है तैयार होना ज़रूरी नहीं है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत हो जरूर होनी चाहिए। ज़िंदगी जब आपको दूसरी बार मौका देती है ना तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में आकर डामाडोल हो जाते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। डू यू नो डामाडोल का क्या मतलब होता है, पता ही होगा आपको। अभी जो है वो मेरे ख्याल में गपशप आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मिर्च चलती रही है। अभी प्रोग्राम में एक कलाम की फरमाइश आन पहुँची है और इस कलाम को मैंने सोचा था कि मैं शामिल करूंगी प्रोग्राम के स्टार्ट में, बट मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था कि मैं घर से सोच कर आई थी कि मैं लिसनर को सबसे पहले जाकर ये वाला ट्रैक सुनाऊंगी और ये वाला कलाम सुनाऊंगी, बट भूल गया। साथ ही मेरे पास फरमाइश आ गई, चांदनी जी ने बड़ी खूबसूरती फरमाइश की है इस कलाम की। अभी चलते हैं इस कलाम की जानिब। अच्छा, चांदनी जी उनका असल नेम नहीं है, ये मैं उनको प्यार से कहती हूँ, और मतलब आप ये ना समझिएगा कि वो चांदनी, उनका नाम चांदनी जी है, उनको मैं प्यार से ही कहती हूँ। खैर अभी जो है वो चलते हैं इस कलाम की जानिब। इस कलाम के उस पार में रहेगी आपसे मुलाकात, शामिल करते हैं सनम मारवी की आवाज़ और अमानत अली ख़ान की आवाज़, शफकत अमानत अली ख़ान की आवाज़। सो रहेगी आपसे मेरी इस कलाम के उस पार मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड डैब, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, जहाँ पर मेरा आपका साथ आता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सो उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे टॉपिक का हमारा जो था स्टार्ट फ्रेश। सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है तकरीबन मेरा आपके मन काफ़ी कम रह चुका है, टॉपिक को मेरे दिल वापसी पर आकर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम में एक कलाम की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, तो कलाम क्यों ना प्ले कर दिया जाए।

ये उम्मीद करूँगी कि आपको ये कलाम पसंद आएगा। ये फरमाइश छोटी सी मेरे पास मौजूद थी, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे ये फरमाइश की गई है, तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी जी इनको। खैर, अगर आप मेरे स्टूडियो के अलावा व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाली खुशी होगी। नंबर मैं आपको ये नोट करवा देती हूँ, 01157100971। सो आइए चलते हैं इस कलाम की जानिब। इसके सुबह मेरे आपके दरमियान हाल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के सुबह रहेगी आपसे मुलाकात सना मालवी की आवाज़ को शामिल किया आपके अपने दरमियान। मिट्टी दी ढेरी हसा दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

नॉट वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज, आप सुन रहे हैं सलो राज की, जहां पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। और तब तकरीबन मेरा आपके दरमियान जो है वो 1 घंटा गुजर चुका है और मोस्टली जो है वो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। बट अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक था फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत। सो वेल, अभी नई शुरुआत और ख़ुद को माफ़ करना, एक मैंने छोटा सा टॉपिक सर्च किया था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी प्रोग्राम में शामिल करूँ कि कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। हम अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा याद करते रहते हैं और ख़ुद को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते। सो नई शुरुआत का एक अहम हिस्सा ये भी है कि इंसान को अपनी पुरानी जो है वो गलतियों को तस्लीम करके उनसे सबक सीखकर और फिर ख़ुद को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। नई शुरुआत का एक अहम हिस्सा ये भी है कि इंसान अपनी पुरानी गलतियों को तस्लीम नहीं कर पाता और जो कर लेता है वो उसको फिर आगे कंटिन्यू कभी कर पाता है। नई शुरुआत का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता बल्कि नई शुरुआत का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आप सुन रहे हैं सलवार की, जहाँ पर हमारा आपका साथ रहता है ठीक और दो बजे तक। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक कलाम शामिल किया था आबदा परवीन की आवाज़ में, और साथ ही में जब मैं आबदा परवीन की आवाज़ को प्रोग्राम में प्ले कर देती हूँ तो मेरे पास फरमाइशें आना शुरू हो जाती हैं। एक फरमाइश हमारी भी पूरी कर दे आबदा परवीन की आवाज़ जो है, सो आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे और जल्दी से करेंगे। ये ना फिर प्रोग्राम एक मशरूम भी खायल हो जाए, फिर आप बोलें कि कलाम सुनने का उस तरह से मज़ा नहीं आया क्योंकि प्रोग्राम एक मशरूम भी खायल हो गई थी। सवाल आइए मेरे ख्याल में आबदा परवीन की आवाज़ को शामिल कर देते हैं। अभी इसके सवा मेरे आपके दरमियान हाल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और फिर कमर्शियल ब्रेक के उस पर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात पर स्टेडियम फजा 97.1 एफएम एंड ऐप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदेद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आप सुन रहे हैं सरवाज की, जहां पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सवाल अभी इसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक बार शुभ काल हो चुकी थी, एक कलाम ले किया था, कलाम के इस वक्त में शुभ काल फिर रही मेरी आपसे मुलाकात। ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था आप फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत का फैसला करना आसान है लेकिन उस पर कायम रहना थोड़ा सा मुश्किल है। जब इंसान किसी भी नई चीज़ का आगाज़ करता है तो उसे खौफ, उलझन और नाकामी का सामना भी हो सकता है, और कभी कभार हम लोग जो है ना वो दिमाग में जहन में इस चीज़ को सोच भी लेते हैं कि मैं भी शायद ये चीज़ मैं ना कर पाऊँ। तो अगर आप ये चीज़ ना सोचें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मुश्किल आगाज़ का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। बाज़ुकात अच्छी चीज़ें वक्त और मुसलसल कोशिश मांगती है, अपने आप को जो है वो

कि भाई आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कल कौन थे। आप आज ये तय कर सकते हैं कि आप आगे कौन बनना चाहते हैं, कौन बनेंगे। सो अपनी रफ्तार किसी और से जो है मत मिलाएं। किसी की कामयाबी देखकर अपनी कोशिश को कम ना समझें। हर शख्स का सफ़र मुख्तलिफ होता है, इसीलिए अपनी मंजिल पर तवज्जो दें और छोटे छोटे कदमों के साथ ही आपको मंजिल आपकी मिल जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आज से शुरू करना चाहते हैं तो अगर आज सामीन देखा जाए तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने की ज़रूरत महसूस हो रही है ना, तो वो उसे एक बोझ ना समझें, उसे एक मौका समझें। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का नया बाप जो है ना, हमारी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे एक मजबूत फैसले से शुरू होता है। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो भरपूर उसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती जो है। कभी कभी जो है वो इंसान को अपनी ज़िंदगी का सफ़र बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका आज वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं तो मायूस होने की बजाय उसे अपनी नई शुरुआत बनाएं। कल की गलतियों को आज समझ कर उसको आगे बढ़ें। आज की कोशिश को कल की कामयाबी की बुनियाद बनाएं और अपने सफ़र को अपनी रफ्तार से जारी रखें। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं और यही एक इम्तिहान होता है, लेकिन वो हमें एक नया रास्ता ज़रूर दिखा सकती है। ज़रूरत जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि हम उस रास्ते पर पहले कदम उठाना चाहेंगे या फिर बाद में। सो समीना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बाप मुश्किल लग रहा है ना आपको, तो उसे अपनी पूरी कहानी ना समझें। किताब अभी बाकी है, सफ़े जो है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, और शायद अगला सफ़ा जो है वो हो जाए जहाँ से आपकी एक खूबसूरत नई शुरुआत हो। वो शुरुआत जो आपने अपने दिमाग में सोची है, वो चीज़ें जो भी आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में करें। नई शुरुआत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि मुश्किल के बावजूद हम आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं, और जब हम आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नई चीज़ें अपनाना काफ़ी नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी भी ज़रूरी होती हैं। पुरानी नाकामियों का खौफ, गैर ज़रूरी परेशानी, दूसरों से मुसलसल मुआजना और ऐसी आदतें जो हमें अपने मकसद से दूर लेकर जाती हैं, उन सब पर गौर करना और एक नई शुरुआत का हिस्सा बन सकते हैं। सो क्या जो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ, अगर सोचा जाए तो वो मुझे इस ज़िंदगी के करीब लेकर जा रही हैं या नहीं, ये आपने सोचना है। अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आएगा के तरीका जो है वो बदल जाएगा। ज़िंदगी बदलने के लिए हर रोज़ कोई बड़ा कारनामा जो है अंजाम देना ज़रूरी नहीं होता। हर रोज़ाना की जो है वो छोटी छोटी मुसलसल मेहनत भी आपको आपकी एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा सकती है। एक कदम आज, एक कदम कल, और फिर यही सफ़र इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाता है। नई शुरुआत अपनी जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। नई शुरुआत उस वक्त होती है जब इंसान माजी से लड़ना छोड़कर मुस्तकबिल बनाना शुरू कर देता है। सो अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत देने के लिए किसी खास दिन का इंतज़ार मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, कभी कभी एक छोटा सा फैसला जो है एक ही बड़ा सफ़र का आगाज बन जाता है। हमें से बहुत से लोग जो है ना, वो दूसरों को गलती करने के बाद माफ़ कर देते हैं, लेकिन बात अपनी हो तो हम खुद को बार बार जो है अपनी पुरानी गलतियों की याद दिलाते रहते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। नई शुरुआत का मतलब ये भी है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें, उनसे सबक लें और ख़ुद को आगे बढ़ने की इजाज़त दें। अपनी गलतियों को समझें मगर उसमें जो है हमेशा ना उलझें। अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और उस पर काम करें। छोटे कदम से जो है आगाज़ करें, कल को आप बहुत बड़ी जगह पर खड़े होंगे। नतीजा आने में वक्त लगेगा, सब्र रखें, लेकिन नतीजा आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप सब्र रख के अपने काम को सर अंजाम देंगे। अपनी तरक्की को दूसरों की ज़िंदगी में नहीं बल्कि अपनी पिछली हालात से देखें। खुद को एक और मौका देने की कमज़ोरी नहीं बल्कि ये तस्लीम करना है कि इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और बेहतर रास्ते पर चल सकता है। शायद आप अपनी ज़िंदगी के उस मकाम पर खड़े हों जहाँ एक रास्ता ख़त्म हो चुका है। याद रखें कि रास्ता ख़त्म नहीं होता, सफ़र का ख़त्म होना जो है वो सफ़र भी ख़त्म नहीं होता। कभी कभी जो है ना, एक नया रास्ता, एक नई सोच और एक नया फैसला इंसान को वहाँ पहचान पहुँचा देता है जहाँ वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पर होऊँगा या नहीं होऊँगा। सवाल इसी के साथ साथ गपशप तो आपके साथ जारी रहेगी। अभी प्रोग्राम में मेरे साथ एक कलाम की फरमाइश मौजूद है, तो कहते हैं तो

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़, आप सुन रहे हैं सलराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक 2 बजे तक। सवाल उसी के साथ साथ अब भी तकरीबन मेरा रात के दरमियान वक्त तो ख़त्म हो ही चुका है। प्रोग्राम में एक छोटा सा कलाम शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलाम पसंद आया होगा। और आज के दिन के वास्ते जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, आज का दिन हमारा टॉपिक था फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। उम्मीद करते हैं इस नई शुरुआत को आप समझेंगे और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सवाल इसी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रहेगी आपसे मुलाकात वीकेंड के उस पार, सो कल तक के लिए नहीं, परसों तक के लिए नहीं, बल्कि मंडे तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

ना मैं लिखूं ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

वेलकम बैक टू रेडियो फजा एफएम 97.1। मैं हूं आपका मेजबान और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जहां से जारी था वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। जी कुछ मसरूफियात की वजह से आज आपसे थोड़ी सी ताखिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन यकीन जानिए जुम्मे के इस खूबसूरत दिन में मैं आपकी सब किस खूबसूरत दिन में आपकी सुबह में बैठने का अपना ही मजा है। आज जुमा है, रहमत और बरकतों और दुआओं का दिन, एक ऐसा दिन जो हमें सिर्फ इबादत की तरफ नहीं बुलाता बल्कि अपने आप को देखने, अपने रवैयों को परखने और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलने का मौका हमें देता है। हमें से हर शख्स चाहता है कि लोग उसके साथ अच्छा सलूक करें, कोई हमें इज्जत दे, हमारी बात समझे, हमारे साथ नरमी से पेश आए, हमारी गलतियों को माफ़ करे। लेकिन कभी हमने खुद से यह सवाल किया, क्या हम भी दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा अपने लिए चाहते हैं?

क्या हम भी दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा अपने लिए चाहते हैं? यही तो असल बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत करते हैं, नेकी का काम करते हैं, लेकिन दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, दीन हमारे अखलाक में भी नज़र आना चाहिए, हमारी गुफ्तगू में भी, हमारे मामलात में भी, हमारे घर के माहौल में भी, और उन लोगों के साथ हमारे रवैये में भी जो शायद हमारे किसी काम के नहीं। कभी गौर कीजिएगा कि हम बाहर के लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही लहजा बदल जाता है। हम अजनबी की गलती बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भाई की मामूली सी गलती पर नाराज़ हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, मगर कभी कभी हम खुद किसी दूसरे की इज्जत मजरूह कर देते हैं। और दोस्तों, इंसान की असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदार में होती है। अच्छा लिबास आपको खूबसूरत बना सकता है, अच्छे अल्फाज आपको मुहज्जब जाहिर कर सकते हैं, लेकिन असल पहचान उस वक्त होती है जब आपके पास किसी को तकलीफ देने का इख्तियार हो और आप फिर भी नरमी का रास्ता इख्तियार करें। जुमा हमें यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके घर में आपके वालिदैन हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें, बच्चे हैं तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, भाई बहन हैं तो रिश्ते निभाएं, दोस्त हैं तो मुखलिस रहें, साथी हैं तो इनकी इज्जत करें, और अगर कोई आपसे कमज़ोर है तो उसे दबाने के बजाय सहारा दें। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती, कभी किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना भी मदद है।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात। वापस

ने की और लोगों के साथ भलाई करने की। देखिए दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, कोई माली मुश्किलात में है, कोई रिश्तों की परेशानी में है, कोई अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, कोई घर की हालत से परेशान है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई तनहाई बर्दाश्त कर रहा है। और मसला यह है कि हमें हर शख्स के चेहरे के पीछे छुपी हुई कहानी मालूम नहीं। हम किसी को देख कर फौरन फैसला कर लेते हैं कि ये तो बड़ा खुश है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, शायद वो रात भर सोया ही ना हो। हम किसी को खामोश देख कर कहते हैं कि बड़ा मगरूर है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, शायद वो अंदर से टूटा हो। हम किसी को गुस्से में देखकर फौरन उसे बुरा इंसान करार देते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कितनी परेशानी अपने अंदर लिए बैठा है। इसलिए ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत उसूल है कि लोगों के बारे में फैसला करने में जल्दी ना करें। अगर आप किसी की हालत नहीं जानते तो कम अज़ कम उसके साथ नरमी ज़रूर करें। और कभी कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट भी किसी इंसान के पूरे दिन को बदल देती है। सोचिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार पहले ही परेशान बैठा है, आप उससे सख्त लहजे में बात करने के बजाय मुस्कुरा कर कहें, भाई ज़रा ये चीज़ दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। मुमकिन है आपके लिए ये सिर्फ एक जुमला हो, लेकिन उसके लिए शायद वो दिन का बहुत अच्छा तजुर्बा हो। आप किसी दफ्तर में जाते हैं, सामने बैठा शख्स काम के दबाव में है, आप उसे डांटने के बजाय एहतराम से बात कर लेते हैं। आपके बच्चे ने कोई गलती की, आप उसे सबके सामने जलील करने के बजाय एक तरफ ले जाकर समझा देते हैं। आपको कोई दोस्त गलती कर बैठा, आप पूरी दुनिया के सामने उसकी गलती बयान करने के बजाय उसे तन्हाई में समझा देते हैं। यही अखलाक है। अच्छा इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के बुरे रवैये के बावजूद अपने अखलाक नहीं छोड़ता। और ये बात याद रखिएगा, किसी को खुश करने के लिए हमेशा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। किसी को खुश करने के लिए कभी सिर्फ ये कहना काफ़ी होता है कि आप कैसे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। देखा आपने, ये अल्फाज खरीदने नहीं पड़ते लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम बाज़ औक़ात अपने ही लोगों को तारीफ के दो अल्फाज देने में कंजूसी कर देते हैं। हम समझते हैं कि तारीफ करने से हमारी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, किसी को हौसला अफजाई करना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि ये आपके किरदार की खूबसूरती है। अपने बच्चों को देखें, अगर बच्चा अच्छा काम करे तो उसे कहें, शाबाश, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। इसी तरह अपने घर में देखें, कभी वालदा से जाकर कह दें, अम्मी आज आप आराम करें, मैं ये काम कर लेता हूँ। कभी वालिद से पूछ लें, अबू आपकी तबीयत कैसी है। कभी बहन भाई से बिला वजह बात करें। रिश्ते सिर्फ बड़े बड़े तोहफों से नहीं बनते, रिश्ते वक्त, तवज्जो, इज्जत और अच्छे अल्फाज से बचते हैं। और दोस्तों एक अहम बात, बहुत ही अहम बात, लोगों की इज्जत उनकी गैर मौजूदगी में करें, उनकी पीठ पीछे इज्जत करें। यह आपकी खूबी है और यह बहुत बड़ी खूबी है। किसी महफिल में बैठे हैं, कोई शख्स वहां मौजूद नहीं और लोग उसके बारे में बातें शुरू कर देते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप भी गुफ्तगू में शामिल हो जाएं या खामोशी से मौजू बदल दें। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत बचाना भी एक बड़ी भलाई है। इसी तरह किसी की कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अगर किसी ने आप पर इतमाद करते हुए अपनी कोई ज़ाती बात बताई है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना है, इतमाद तोड़ना है। लोगों के राज संभालना सीखें, लोगों की इज्जत संभालना सीखें, लोगों की मजबूरियों का मजाक ना बनाएं। और अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इस तरह के सामने वाले की इज्जत नफ्स भी महफूज रहे, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। कभी किसी ज़रूरतमंद को मदद देते हुए उसकी तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं, कभी किसी की मजबूरी को सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। नेकी की सबसे खूबसूरत शक्ल वो है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। आज जुमा के दिन अपने आपको से एक सवाल जरूर कीजिए कि मेरी वजह से कितने लोग खुश हैं। ये बहुत खूबसूरत सवाल है। सुबह उठे तो किसी को मुस्कुराया, किसी का काम आसान किया, किसी को रास्ता दिया, किसी का फ़ोन उठाया, किसी परेशान शख्स की बात सुनी, किसी नाराज शख्स को मनाने की कोशिश की, किसी को माफ़ किया, किसी के लिए दुआ की। अगर इनमें से एक काम भी आपने किया तो समझे आपने अपने दिन में एक खूबसूरत चीज़ शामिल कर दी। और अगर आज अभी तक कुछ नहीं किया तो कोई मसला नहीं, दिन अभी बाकी है, अभी से शुरू करें। किसी एक इंसान को खुश कर दें, किसी एक इंसान की मदद कर दें, किसी एक इंसान को माफ़ कर दें।

दोस्तों यही खूबसूरत मुआशरा बनता है, कच्चे इंसान से, फिर दूसरे अच्छे इंसान से, फिर तीसरे से, और यूं छोटी छोटी नेकियां मिलकर पूरे मुआशरे का माहौल बदल सकती हैं। तो आज के इस जुमा के दिन अपने दिल से नफरत कम करें, शिकायतें कम करें, माफ़ी ज़्यादा करें, मुस्कुराहट ज़्यादा करें, दुआ ज़्यादा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। किसी को मालूम नहीं कि हमारी ज़िंदगी का कौन सा दिन आखिरी हो, इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी किसी से मिलें यूं समझ के मिलें कि आखिरी दिन है, वो हमें याद करे तो अच्छे अल्फाज के साथ याद करे।

और शायद इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसके जाने के बाद भी लोगों के दिल में उसके लिए अच्छी दुआ बाकी रहे। आप सुन रहे रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 और मैं हूँ आपका मेज़बान। वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारी ये खूबसूरत गुफ्तगू भी जारी, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आगे अभी बात होगी ज़िंदगी की, रिश्तों की, अखलाक की, मोहब्बत की और इंसानियत की, और शायद अगली बात वो हो जो आपके दिल को छू जाए। आपकी आवाज़, आपका साथ, रेडियो फ़ज़ा FM 97.1।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

आप किससे मोहब्बत करते हैं लेकिन उसके एहसास को नहीं समझते तो मोहब्बत अधूरी रह जाती है। किसी को तोहफा देना आसान है लेकिन उसकी खामोशी समझना मुश्किल है। किसी के लिए अच्छी बात कहना आसान है लेकिन उस वक्त उसके साथ खड़ा होना मुश्किल है जब पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ रही हो। और असल रिश्ता वही है जो मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। खुशी में तो हर कोई साथ होता है। जब आप कामयाब हों सब आपके करीब आते हैं। जब आपके पास पैसा हो सब आपको याद करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो लोग आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं। लेकिन जब इंसान मुश्किल में हो, जब उसके पास देने को कुछ ना हो, जब उसके पास बात करने के लिए सिर्फ एक दर्द हो, तब जो शख्स उसके पास बैठ जाए वही असल अपना होता है।

और दोस्तों हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के ऐसे वक्त के साथी बने, हम किसी के लिए सहारा बने, किसी की ज़िंदगी में आसानी बने, किसी के लिए उम्मीद बने, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ले आए। कभी किसी को 500 रुपए की ज़रूरत थी, कभी किसी को 5 मिनट की, और कभी किसी को सिर्फ 5 अल्फाज की। फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। ये अल्फाज कभी इंसान को टूटने से बचा लेते हैं, इसीलिए अपने अल्फाज का ख्याल रखें। ज़बान छोटी है लेकिन उससे निकलने वाली बात बहुत दूर तक जाती है। एक सख्त जुमला बरसों की मोहब्बत को नुकसान पहुंचा सकता है और एक नरम जुमला बरसों की नाराजगी ख़त्म कर सकता है। इसलिए जब गुस्सा आए ज़रा रुक जाइए, जवाब देने से पहले सोच लीजिए क्या ये बात कहना ज़रूरी है, क्या ये बात इस अंदाज में कहना ज़रूरी है, क्या मेरे अल्फाज सामने वाले के दिल को तोड़ देंगे। अगर जवाब हाँ है तो शायद खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी खामोशी भी बहुत खूबसूरत जवाब देती है, और हर बहस जीतना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान बहस जीत जाता है लेकिन रिश्ता हार जाता है। सोचिए, आपने साबित कर दिया कि आप सही थे लेकिन सामने वाला आपसे दूर हो गया। अब आपके पास अपनी जीत तो है लेकिन रिश्ता नहीं। इसलिए ज़िंदगी में कुछ जगहों पर दलील से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दीजिए। अगर आप गलती से माफ़ी मांगने में देर ना करें, ये मत सोचें कि मैं पहले क्यों झुकूँ, ये मत सोचें कि गलती तो उसकी भी थी, बस ये सोचें कि रिश्ता मेरे लिए अहम है इसलिए मैं पहला कदम उठा लेता हूँ। कभी एक को माफ़ कर दें, इंसान को छोटा नहीं करता ये, बल्कि बाज़ औक़ात यही अल्फाज इंसान को बहुत बड़ा बना देते हैं। और माफ़ी सिर्फ ज़बान से नहीं होती, दिल से होनी चाहिए। हर चीज़ भूल जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को दिल पर रख कर बैठना भी ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम जाने कितने साल सिर्फ इसलिए ज़ाय कर देते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया था, फ़लाँ ने वो कहा था, फ़लाँ ने मुझे इज़्ज़त नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, कभी अपने दिल से पूछें क्या मैं इस गुस्से के साथ खुश हूँ। अगर नहीं तो फिर दिल को आज़ाद कर दीजिए।

दिया, किसी की फीस दे दी, किसी का किराया अदा कर दिया, किसी के घर राशन पहुंचा दिया, किसी बीमार की दवा ले आए और फिर खामोशी से वापस आ गए। ये भी इंसानियत है, बल्कि शायद इंसानियत की खूबसूरत तरीन शक्लों में से एक है। और एक और खूबसूरत काम, लोगों के लिए दुआ कीजिए। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके लिए तो दुआ करते ही हैं, कभी उस शख्स के लिए भी दुआ करके देखिए जिससे आप नाराज़ हैं, कहिए या अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा। शायद आपको हैरत हो कि दुआ करते करते आपका अपना दिल भी नरम होने लगे। और यही तो मोहब्बत है, मोहब्बत हमेशा हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत कभी कभी किसी के लिए अच्छा चाहने का नाम भी है। किसी की खुशी देखकर खुश होना भी मोहब्बत है, किसी की कामयाबी पर दिल से कहना माशाल्लाह अल्लाह उसे मजीद दे, ये भी मोहब्बत है। और किसी के दुख में खामोशी से उसके साथ बैठ जाना भी मोहब्बत है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: Better. The radio station for people who love music.
1: But 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0793-2।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132, ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ समीर और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड दैब। आज का शो बड़ा ही एक्साइटेड होने वाला है और इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्फिडेंस, हाउ वी कैन गेन कॉन्फिडेंस इन एनी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। हम अपने तमाम सुनने वालों को अपने इस शो में वेलकम करते हैं और जो नए जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए अपना एक रब्ते का नंबर भी छोड़ते हैं और उनमें आपकी आप लोगों की राह और आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस उसको भी शामिल करेंगे। लाइव कॉल और मैसेजेस के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 01157100971। और हमारे इस शो का नाम है ड्राइव जोन, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट।

आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस पे, कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है और इसको हम कैसे गेन कर सकते हैं और इसके बगैर जो हमें कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ता है उन पर भी डिस्कस होगी और आप लोगों की जो कीमती एक्सपीरियंस है उसको हम साथ लेके चलेंगे और हम जो है बेसिकली इस दुनिया में रह तो रहे हैं और हमारे जो इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी है ये सारी कॉन्फिडेंस बेस पे चल रही है, मुझे ऐसा लगता है।

हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका मेन जो पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट, और इसी के साथ साथ हम जो है एक सॉन्ग जो है वो ट्रैक प्ले करेंगे अपने शो में। उसके बाद जो है इस पर जो हमारा टॉपिक है इस पर डिस्कस करेंगे।

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं एक बहुत प्यारे सॉन्ग से जो सिद्धू मूसेवाला का था, सेम बीफ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस। तो इस सॉन्ग में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वाइब्स आ रही थी मुझे, क्या आप लोगों को भी आई हैं? मैंने कहीं पे पढ़ा है कि एक बुक थी उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई थी कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, इफ़ इट इज़ टू बी व्हाई नॉट मी, अगर ये काम हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ज़िंदगी में जब हम आगे पीछे देखते हैं और अपनी सराउंडिंग में चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ लोग हाईली सक्सेसफुल हमें नज़र आते हैं, तो वो उसमें उनकी जो मेन कोर वैल्यू होती है या कोर लाइक कह लें कि बैकबोन जो होती है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से अनएजुकेटेड पीपल जिनके पास यूनी की या मतलब फॉर्मल एजुकेशन की डिग्रीज नहीं होती, लेकिन वो बहुत सारे बिजनेस एम्पायर खड़े करके वो बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग उनके पास काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ समटाइम हमें जो है वो सोचने पर मजबूर करती है कि हम में ऐसी क्या कमी है जो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम जब अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होते हैं और स्कूल में जा रहे होते हैं और अपना जो फ्री टाइम होता है वो थोड़ा सा एक बड़ी लाड वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, वो बहुत जल्दी जो है ना उनके घरेलू हालात ऐसे होते हैं या ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी उस आलमी जो मंडी होती है या मार्केट होती है उसमें चले जाते हैं। तो फिर वो कोई भी स्किल या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में वो अपना टाइम देते हैं, तो एक वक्त आता है कि उसको उन लोगों को उस फील्ड में इतना गलतियाँ कर करके एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो फिर जो है एक वक्त आता है कि वो अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करते हैं और कर देखते देखते और उनकी जो मेहनत होती है वो रंग लाना शुरू कर देती है। तो कॉन्फिडेंस बेसिकली हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिधर पूरी दुनिया का जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि जो किताब में लिखा है उसी को पढ़ो और उसी के जो जवाब उसी में लिखे हैं उन्हीं को जो आपने आंसर करना है, तो फिर आपको मार्क्स पे जो है ना नंबर्स वगैरह वो मिलेंगे या आपके ग्रेड्स वगैरह एजुकेशनली वो जो डेवलप होते हैं और बनते हैं, और आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड शीट होती है तो उस पर वही चीज़ जो है वो नज़र आती है कि इसने फ्रॉम द बुक कितना लिखा है। हालांकि जो रियल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है। जैसा कि मैं अभी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मुझे माइकोफोबिया था, माइक से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि माइक पे आप कैसे आते हैं और बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं तो वो सारे जो है बहुत अपनी अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनके सामने हम बात कैसे करें, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए। बचपन में जब घर पे मेहमान आते थे और मेरी स्पेशली जो है वो कज़न्स आती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हेजिटेशन होती थी और बहुत ज़्यादा मैं शर्मीला था, तो कम्युनिकेशन बेसिकली वो बड़ी वीक थी। वक्त गुजरता गया और एजुकेशन गेन करते करते फिर जो है ना मैंने देखा कि वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। फिर इस फील्ड में मैंने जो है अपने मेंटोर्स ढूंढे, उनसे जो है ना वो टिप्स वगैरह ली और टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और ये मेरी बड़ी जो है ना दरीना ख्वाहिश थी कि मैं कभी आरजे बनूं और जो है ना माइक पे एक पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करूं। इधर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड था, तो वो कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली ट्रेनिंग ली और छोटी छोटी गलतियाँ करते करते आज मैं इस पोजिशन तक पहुँचा हूँ। Still I am making a lot of mistakes, but experience की जो definition है वो भी यही है कि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों में कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिससे काम ठीक होना शुरू हो जाता है। That is called experience, और जो experience जो है ना वो confidence को empower करता है। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? अभी जो अगर आप लोग किसी को अपना सॉन्ग वगैरह डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम फुली अवेलेबल हैं आप लोगों के साथ। आप
आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजेंगे इस नंबर पर 01157100971। अपने मैसेजेस और कॉल के थ्रू भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, और जो हमारी सबकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएं, अपने हिस्से का जो है वो दरख्त लगाएं। अभी बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, वो ट्रैक प्ले करते हैं अपने शो में, और क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: टर्न इट अप, रेडियो फाज़ा 97.1 FM।
6: बिगर, बिगर एंड बेटर, बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। फाज़ा 97.1 FM।

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं बहुत ही प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक से। इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। जिन लोगों के बिजनेसेस हैं वो अपना अगर कारोबार को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपके लिए बेहतरीन सी एक स्ट्रेटजी वाली कंपेन लॉन्च की जाएगी रेडियो फजा 97.1 FM पे। और हम अपने नए सुनने वालों को वेलकम करते हैं अपने शो में। आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस, हाउ वी कैन गेन इन आवर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और फुल ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन वो पब्लिक अवेयरनेस में बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाते। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमन लाइफ का सबसे मेन जो है वो पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम बेचते हैं, सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं, तो उसमें जितना कॉन्फिडेंट आपका वो आप एज ए सेलर होंगे या आप एज ए कस्टमर होंगे तो उतनी अच्छी ही आप डील कर सकते हैं। एक छोटी सी बात ये है कि हर बंदा ही बिजनेसमैन है। कुछ लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ अपना टाइम जो एज ए जॉब के थ्रू अपना टाइम बेचते हैं, बेसिकली 8-10 घंटे या 12 घंटे जो भी एक सेटल्ड सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हम अपना टाइम सेल करते हैं, है ना? नई बात। जैसा कि सबसे मेन चीज़ है कि हम स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते लेकिन कुछ लोग बड़े ही हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं, तो हमें ये सवाल जो है ये क्वेश्चन हमारे माइंड में इंट्रिगर होना चाहिए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कोई दुनिया का कोई भी काम जो करने के लिए आपको अच्छे मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितने ज़्यादा वो एक बड़ी प्यारी बुक में लिखा हुआ था कि जितनी जल्दी आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो फिर आप अपने जो उस्ताद हैं बेसिकली मेंटोर्स हैं उनके नंबर जो है इनक्रीज कर दें। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो दुनिया की किसी मार्केट में नहीं बिकती। इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम मिस्टेक्स। जो हमें हमारा मुआशरा और हमारी सोसाइटी प्लस हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी जिस इन्वायरमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है वो तीनों हमें अलाउ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे अनसर्टन रूल हैं जो सोसाइटी में चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्लस कॉन्फिडेंस। मुझे आरजे बनने का शौक तकरीबन 12-15 साल पहले से था लेकिन मुझे राइट टाइम और राइट जो है वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था।

कम्युनिकेट उर्दू में करते हैं, ऐसा सोचा जाता है और कहा भी जाता है। अभी आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स को भी शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की जो है हमें रिक्वेस्ट आई है, किसी को डेडिकेट किया है। क्या नाम है जी जिनकी रिक्वेस्ट आई है? मनदीप कौर हैं जी, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे अपने इस लाइव शो में, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए।

வெல்கம் பேக் அகெயின் இன் ஃபஸா 97.1 எஃப்எம் அண்ட் டேப். अभी हम लौट के आ चुके हैं बहुत ही प्यारे सॉन्ग से यार अनमोले, और इसने बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो उसको रिफ्रेश कर दी है। अक्सर अभी जो हमारी सोसाइटी चल रही है और सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा जो है ना यूजेज ने हमें घरों तक इनबाउंड कर दिया है, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होगी और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बेसिकली वो बड़े डिस्टर्ब होंगे। वाइद एक कम्युनिकेशन ऐसा स्किल है जो घर पे बैठ के बिल्कुल नहीं सीखा जा सकता, और इसके लिए आपका जो है ना ह्यूमन सोसाइटी जो और लाइव लोगों के दरमियान जाना बड़ा ज़रूरी है। मैं कॉन्फिडेंस की बात अगर बताता चलूँ तो हमारा जो बेसिकली बिजनेस है वो गैराज का है और गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं हम लोग, और ये मेरा जो शौक़ है इसका आरजे बनने का, तो वो मैं पार्ट टाइम निकाल के तो इसको जो है ना मैं 2 घंटे का शो करता हूँ। हमारे पास एक बड़े अच्छे मैकेनिक हैं और वो बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में वो बड़ी महारत रखते हैं और 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है गाड़ियाँ रिपेयर करने में, लेकिन जब कस्टमर को डील करने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं अपना जो है कॉन्फिडेंस वो लीक कर जाते हैं, और वो उस तरह एक एक्सपर्टली जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं अपने कस्टमर से एक साथ कर पाते जैसे उनको करना चाहिए। तो मैंने एक दिन बड़ी परेशानी के साथ उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों है। कहते हैं कि जब हमने काम सीखा तो हम बैक जो हमारा गैराज था वो पैक था, तो वो हमारी कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती थी, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही हम, और हमारा जो कम्युनिकेशन का बेसिकली एक जो सीखने का अमल था वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिला, तो जिसकी वजह से हमें जो है इस काम में कम्युनिकेशन में बेसिकली प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में, लेकिन वो स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो कोई भी काम अगर उसको सीखा जाए तो उसमें जो है वो आपके साथ आप गलतियां करते हैं, उसके साथ जो है गलतियों के साथ आपके पास एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस जो है वो आगे चल के आपको कॉन्फिडेंस बेसिकली देता है। जैसे एक बैट्समैन है, अगर उसने एक बार सेंचुरी कर लिया है अपने क्रिकेटिंग करियर में, तो जब भी वो क्रीज पे जाता है तो उसको जो है ना वो जो उसका प्योर एक्सपीरियंस होता है उसको कॉन्फिडेंस देता है कि यस यू हैव डन इन योर प्रीवियस गेम्स, नाउ यू आर जो अभी आप फिर आप कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मदर्स हैं बेसिकली जो बच्चों को ड्राइविंग सीखने में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, कहते हैं कि ये ना हो कि कहीं पे गाड़ी जो वगैरह ये कहीं मार ना दे और किसी का नुकसान ना कर दे। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी यूके में मैं देखता हूँ वो सब कुछ है लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जब पूछने पे पता चलता है कि घर वालों ने अलाउ नहीं किया और ऐसा माहौल नहीं मिला जिसमें वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो स्टेयरिंग पे बैठते और कोई उनको मेंटोर मिलता और वो ड्राइविंग सीख पाते। हालांकि वो भी उन माओ के बच्चे हैं जो कमर्शियल एयरप्लेन्स उड़ाते हैं और उनमें से भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जो फाइटर जेट्स चलाते हैं। तो पब्लिकली कोई भी बंदा अपने घर पे कमर्शियल प्लेन नहीं रखता और फाइटर जेट्स किसी के घर नहीं होते, तो वो जो उनको बैकिंग मिलती है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे यस यू कैन डू इट, तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और डिस्करेज भी करता है, डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस इन्वायरमेंट में हैं।

हमारा जो सोसाइटी है वो हमें बिल्कुल गलती करने की गुंजाइश नहीं देती, और ना हमारी जो सिस्टम है इसमें गलती की कोई मतलब, गलती एक बेसिकली फेलियर का लेबल है जो लोगों के साथ अटैच कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग अपने ख्वाब और अपने बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो अपने ऐसे काम करने जाते हैं कि वो जब बात आती है गलती करने की और मिस्टेक्स करके बंदा सीखता है, तो इधर आके वो अपने सपने और अपना जो जो गोल होता है वो अचीव करने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपने बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट किए होंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो जो है वो दिए होंगे। तो इंटरव्यूज़ में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो इसकी डिग्रीज़ हैं, इस बंदे के क्रीडेंशियल्स हैं और CV में जो चीज़ें मैंशन हैं, आया कि इसको इन पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं।

मैं अपना एक छोटा सा जो है ना वो आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा बैक इन कंट्री पाकिस्तान, जब मेरी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी। तो हालांकि जो मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता कि जो आप इलीगली कुछ करें, तो सम टाइम रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको जो है वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। दरमियान का रास्ता निकालना है, ये बेसिकली इसको लोग होशियारी समझते हैं और सब उसको बुरा भी जानते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं। तो हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल जिसे ईद होती है वो वाला दिन था। तो जो मीरपुर से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से, तो उनको पता है कि मंगला में जो हमारा पंजाब और कश्मीर के दरमियान एक ब्रिज है, उधर ईद वाला दिन था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया तो उधर आगे देखा कि वो पुलिस वाले थे, तो वो जो है ना गुजरने के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे अपनी मोटर बाइक के, लाइसेंस तो वैसे भी नहीं है, अंडर 18 आप मोटर बाइक नहीं चला सकते, लेकिन हमारी कंट्री में सब कुछ है, दुनिया में तकरीबन हर जगह ही लोग ऐसी चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन उधर चल जाता है। तो स्टूडेंट्स बगैर लाइसेंस के भी समटाइम मोटर बाइक्स चलाते हैं। तो मैं जो है ना बेसिकली उधर गुजरने से, अगर वो उधर पहले चले जाते तो उन्होंने बाइक्स या तो पैसों की डिमांड ज़्यादा करनी थी, अदरवाइज़ जो है ना बाइक्स जो है वो इम्पाउंड हो जानी थी। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मैं पहले जाके कम्युनिकेट करता हूँ, बात करता हूँ, अगर वो सिस्टम में आते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ जो है हम वापस घर चले जाते हैं। तो बाइक मैंने उधर ही खड़े की है और वो जो पुलिस वाले थे उनके पास मैं गया, कॉन्स्टेबल थे बेसिकली। मैंने कहा जो है ना गुजरने का क्या तरीकाकार है, कहते हैं बस कोई तरीकाकार नहीं, 200 रुपया आपको देना पड़ेगा तो देन यू कैन पास इट। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो कहते हैं सुबह से सारे लोग 200 रुपये ही दे रहे हैं तो आप भी 200 देंगे। मैंने कहा नहीं मैं 50 रुपये दूंगा। कहते हैं आपका दिमाग सेट है कि सब लोग 200 दे रहे हैं और आप 50 रुपये देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, तो आप जो है ना आपकी बाइक किधर है। मैंने कहा बाइक इधर ही है, जस्ट आप जो है ना पहले मेरे साथ डील करें, देन आई विल ब्रिंग माय बाइक हियर। तो वो मान के कहते हैं चलें ठीक है दें आप 50 रुपये। तो वो ये सिस्टम था कि उनके दोनों हाथ जो है वो पैसों से भरे हुए थे, तो सारी पॉकेट्स थी वो भी फिल थी पैसों के साथ, इतने ज़्यादा पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। तो मैंने कहा 50 रुपये दूंगा और जो है ना दो बाइक्स में हमने इधर से गुजारनी है। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा देन आई एम गोइंग बैक। कहते हैं जाओ जी 50 रुपये दो आप। तो जब हमने उनको 50 रुपीज़ दिए और दूसरे वाले जो उनके साथ असिस्टेंट थे उन्होंने बाइक रोकने का इशारा किया, तो कहते नहीं नहीं इनकी पेमेंट हो गई है, लेट देम गो। तो उस एज में जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है, एक तो इतनी 16-17 साल की एज में हमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल किसी के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प नहीं करता, और स्कूल्स में हमें कहता है कि वो सिखाया जाता है कि वो वांट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे वो खून में शामिल हो जाती है और ज़िंदगी में भी हम पिन ड्रॉप साइलेंस के मूड में ही रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो हम बने होते हैं उनके लिए कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंस इतना डेवलप नहीं होता कि हम उन चीज़ों को अचीव कर सकें। ये थी थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और निगोशिएशन स्किल्स आपके डेवलप हो गए हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट, और अभी एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो उसको प्ले करते हैं अपने शो में।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
7: Radio Bazaar 97.1 FM.
8: Hit music. Back to back.

वेलकम अगेन बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं बहुत ही प्यारी से कमर्शियल ब्रेक से, विच वॉज सो इन्फॉर्मेटिव। टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्फिडेंस, हाउ वी कैन गेन इट। वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड विच मोस्ट पीपल डोंट हैव। डू यू थिंक सो? जो खतरात होते हैं, जो डेंजर्स होते हैं, वो बेसिकली लोगों के जो कॉन्फिडेंस को टेस्ट करते हैं, और कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट भी की जाती है पूरी दुनिया में। हालांकि कोई भी फील्ड उठा के देख लें, तो जैसे फुटबॉल है तो उसमें रोनाल्डो और मैसी का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन लोगों को खुद पे यकीन है और वो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करते हैं, और अपना जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से गेन किया, और एक्सपीरियंस जो मिला है उनको बहुत सारी गलतियां कर करके मिला है। अपीरेंटली लोग आपका जो सफ़र होता है वो नहीं देखते, वो आपका सफ़र नहीं देखा जाता, आपकी जो प्रेजेंट जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम विद इन डेज जो है वो चीज़ जो आपने अचीव की है सालों की मेहनत से, तो वो जब जो है ना विद इन डेज जो है वो लेवल अचीव कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें शॉर्टकट्स नहीं होते। जैसा कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन आप ड्राइविंग नहीं खरीद सकते, आप किताब खरीद सकते हैं इल्म नहीं खरीद सकते, और माइक खरीद सकते हैं और बोलना सीख नहीं सकते। बाय द वे ये मेरे लिए था।

0: हेलो
1: भाई यार, मनु टाड़े खबर सुनी?
0: ओ हाँ यार, खबर तो सुनी।
1: चल चल भाई, फिर शाम का प्रोग्राम कैंसिल
0: यार। उतना पिंडो मना लिया भी तो रहा है।
1: हाँ यार, मुझे फिर की बनू
0: ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
1: ਹੈ।
0: ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं और उनको भी साथ साथ हम शामिल कर रहे हैं। देखो, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। और हमारे जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े बहुत, वो थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन क्या करें, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम फुली फोकस्ड होते हैं ड्राइविंग पे, और हमारे जहन में जो है ना, माइंड जो है वो बेसिकली थोड़ा सा फ्री होता है, तो उस वक्त जो बात समझ आ जाए मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर होती है। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? और आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बेसिकली बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, और इसको जो है वो घर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं गेन किया जा सकता। और किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में आप हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 50 पाउंड की कोई चीज़ है, उसको अपने शीशे का ग्लास है या कोई ऐसी मतलब चीज़ है जो 50 पाउंड की वर्थ रखती है और वो बहुत ही फ्रेजाइल है, तो टूटने वाली है। तो अगर आपके पॉकेट में 100 पाउंड है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे अपने हाथ में, चेक करेंगे। तो अगर आपके पास जो है वो 100 पाउंड है और किसी चीज़ की कीमत जो है वो 1000 पाउंड है, तो आपके जो हाथ हैं वो बेसिकली कांपना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस।

आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और हमें जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली और दोस्त और जो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने इसी प्लेनेट पे रहना है और इस प्लेनेट को हेल्दी रखना हम सबकी ड्यूटी है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं दिया जाता और जो हमारे समटाइम टीचर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो हमें जो है वो आई फील समटाइम हमें मेक लिटिल फील करवाया जाता है हमारे ओपिनियन की, हमारी जो क्वेश्चन होता है और हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो खामोश करवा देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ऐसा ही समझेंगे। दो दिन पहले मैं एक हमारे बैक इन कंट्री पाकिस्तान हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो वो जो स्टूडेंट्स के साथ उनका वो एक इंटरेक्शन चल रहा था, बच्चे कोई भी बात करते थे तो उनको जो है ना वो डिस्करेज किया जा रहा था, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हर बंदे के जो पहाड़ी इलाके में रहता है उसका जो लाइफ है वो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली डिफरेंट होगा, तो इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारे लोग वो जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो बेसिकली सक्सेस जो मेन रिलाई करती है वो होती है आपके कॉन्फिडेंस पे। मैं अपना जो है ना यूएई का एक्सपीरियंस छोटा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने इधर आने से पहले, यूके में आने से पहले मैं दुबई में गया और दुबई में जो है वो ड्राइविंग का बड़ा इशू है और बहुत सारे लोग दुनिया के उधर ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो हर बंदा जो है ना वो उधर ड्राइव नहीं कर सकता। फ्लाई ओवर्स और जो है ना वो रूल्स जो हैं ट्रैफिक के वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो मेरे पास बैक इन कंट्री पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था तो मैंने उधर ड्राइविंग सीखनी थी। गली मोहल्ले में भी लोग वो जो उनकी वो साइड एरियाज हैं, एक तो मेन सिटीज हैं वो, अगर आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे किसी की जान को खतरा हो, लेकिन क्या करें पूरी दुनिया में लाइसेंस वगैरह होने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो समटाइम लाइसेंस भी जो इस चीज़ को गारंटी नहीं करते कि आप जो है ना वो अच्छी ड्राइविंग करते हैं या नहीं करते, समटाइम चीज़ें सिचुएशनल हो जाती हैं। मैं इलीगल जो एक्ट्स हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन समटाइम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं। तो मैं और भाई थे और वो उधर तकरीबन 10 साल का उनका एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, तो मैंने कहा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है और मैंने लाइसेंस जो है वो अटेन करना है। तो हमारी जो बैक इन कंट्री है और यूके में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है और उधर लेफ्ट हैंड साइड थी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जब स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठा मैं गाड़ी सीधी करता था तो वो 2 फुट जो है ना वो तकरीबन लाइन से नीचे आ जाती थी। हमारा थोड़ा सा पहले झगड़ा हो गया तो फिर भाई ने कहा कि यार आप जो है ड्राइविंग इधर नहीं कर सकते, तो मैंने कहा नहीं, आई एम टू ड्राइव हेयर और मुझे जो है ना इधर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वक्त आया कि थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पहले एक्सपीरियंस था, लेकिन दुबई का जो लेफ्ट हैंड का एक्सपीरियंस था वो नहीं था, तो उधर जो ड्राइविंग है वो सारी कॉन्फिडेंस बेस्ड है। तो फिर मैंने जो है ना इलीगली जो गाड़ी ड्राइव करना शुरू की साइड एरियाज़ में। उधर जो उनके जो पुलिस का जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है और एक जो उनका सिपाही है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और जो है ना जिधर एक उनका सिपाही आ जाता है जिसको हम शर्ता बोलते हैं तो वो पूरा एरिया जाम कर देता है। तो मैंने जो अपनी ड्राइविंग है वो सारी उनकी जो बेस कैंप था उनका पुलिस स्टेशन का, तो उसकी सराउंडिंग वाली जो गलियाँ थी साइड रोड्स थी, तो उधर मैंने जो है ना वो अपनी ड्राइविंग स्टार्ट की और रोड एक्सपीरियंस लेने के लिए। था तो इलीगल लेकिन क्या करें, कामयाबी में थोड़ा बहुत जो है ना वो इलीगल रिस्क लेने पड़ते हैं। एक दिन भाई ने बोला या तो हम दोनों घर जाएंगे, क्योंकि फ़ाइन बहुत हैवी है उधर और जो है ना वो वीज़ा वगैरह कैंसिल हो जाता है, या तुम जो है ना इधर ड्राइव करोगे। तो फिर मैंने ड्राइव की, तो एक दिन हम ड्राइव कर रहे थे तो उनकी पुलिस की गाड़ी जो है वो मेरी गाड़ी के पीछे आ गई और जिधर जिधर हम जा रहे हैं वो फॉलो कर रही थी। मैंने जब एक टर्न लिया तो वो भी पीछे पीछे आ रही थी, देन आगे जाके फिर राउंड अबाउट आया, फिर टर्न लिया, तो फिर मुझे शक हो गया। मैंने कहा अभी जो है ना वो घर जाने का, बैक इन कंट्री पाकिस्तान जाने का वक्त आया जाता है,
तो फिर दोबारा मैंने जो है ना दो तीन गलियां के जो टर्न लिए तो फिर मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा स्वेटनेस हो गई। और भाई ने बोला कि अभी आपने गाड़ी रोकनी नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो जो है ऐसे ही था, जो एक्सीडेंटली उस वो रेजिडेंशियल एरिया था तो उधर एक जो है ना वो एक दफ्तर टाइप था बेसिकली, तो वो उधर जो हमारी गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी वो उसने इशारा डिपर लगा के तो वो गाड़ी उस जो है उसकी पार्किंग में चली गई। फिर मैंने आगे जाके गाड़ी खड़ी की, हैंड ब्रेक जो है वो अप्लाई की, 6 गिलास पानी मैंने पिए तकरीबन, मुझे स्टिल याद है, और 5-6 गिलास भाई को बुलाए। तो कॉन्फिडेंस सम टाइम जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में जो डिफरेंस है उसका सही टाइम पे पता चलना ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें जो बैलेंस है वो कैसे आएगा, वो आएगा एक्सपीरियंस के साथ। तो अभी एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, उसकी रिक्वेस्ट आई है तो उसको शामिल करते हैं अपने शो में।

0: ये कमर्शियल तो सुन ले.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे. हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Ready to move.
13: It's all about the beats.
14: Wow, FM.
15: Only tune Super Hit Channel.
16: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey,
2: I had a

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.
12: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
13: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल,
2: जबरदस्त हिट्स,
3: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
1: फजान 97.1 FM,
3: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot, search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: आपके दिल की धड़कन, Radio Faza 97.1 FM.

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: आई आई

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या कर।

Listen to 97.1 FM. This is Lady Fazer.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: सुनते रहिए Radio Fazaa 97.1 FM.

0: मैं जट यमला।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।